0: Mirchi, it's hot. Suren ke saath, only on Mirchi, it's hot.
1: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
2: हर हफ्ते मैं यहां आता हूं 20 गाने आप और ये काउंटडाउन। लेकिन आज एक बात कहनी है पहले। बॉलीवुड में बहुत शोर है, बहुत चमक, बहुत पीआर, बहुत नॉइज, और उस शोर में कुछ गाने होते हैं जो सच में फील किए गए हैं, लिखे गए हैं, जिए गए हैं। वो गाने अलग सुनाई देते हैं हमेशा। आज का शो उन गानों के बारे में है, उन लोगों के बारे में है जिन्होंने शॉर्टकट्स नहीं लिए, जिन्होंने शोर नहीं मचाया, बस काम किया और वो काम आप तक पहुंचा इस काउंटडाउन के जरिए, मेरे जरिए। हाय, आई एम सुरेन सुंदरम एंड दिस इज द मिर्ची टॉप 20, इंडिया का सबसे डेफिनेटिव हिंदी म्यूजिक काउंटडाउन। और मैं आपको वो सब सुनाऊंगा जो डिजर्व करता है सुना जाना, नंबर 20 से नंबर 1 तक। तो शुरू करते हैं विद गाना नंबर 20, रणवीर सिंह, धुरंधर, इश्क जलाकर।
3: नंबर 20।

और फिर नंबर 19 पर एक डेब्यू सॉन्ग आदित्य रिखारी और साथ में है श्रेया घोषाल जो 2026 में बिल्कुल एक जेंजी सिंगर की तरह सुनाई दे रही हैं। दिस वन इज कॉल्ड दिल वाले चोर फ्रॉम पति पत्नी और वो दो। क्लियरली चीटिंग इज कूल। नंबर 19।

0: ये था क्या कमाल है नंबर 18 इस हफ्ते। एआर रहमान का म्यूजिक, इरशाद कामिल के अल्फाज और दिलजीत की आवाज। और इन गानों के बावजूद लोग कहते हैं नहीं यार, पुराने गाने ही अच्छे होते थे। मैं हूं सुरेन और आज मैं उस डिबेट को सीधा खत्म करना चाहता हूं। इरशाद कामिल, जिनसे ये बात मैंने खुद पूछी, उनका जवाब सुनिए।
1: Actually, I don't miss anything in today's song. क्योंकि हम पिछले पुराने गाने ना भाई साहब सिर्फ 200 सुन रहे हैं, आपको पता है। और पिछले 100 साल से हम फिल्में बना रहे हैं। आलमारा हमारी पहली पिक्चर थी जिसमें गाने थे, और अब तक हम पिक्चरें बना रहे हैं और रेडियो पे सिर्फ 200-250 गाने चलते हैं पुराने, वही बार बार जो हिट हो गए हैं। और उसके अलावा वो सब आप नहीं सुनते हैं जो आप तक पहुंचा ही नहीं है या आप अप्रोच नहीं कर रहे हैं। आज के जमाने में भी आप आज के टाइम को थोड़ा सा वक्त दीजिए, 10-15 साल दीजिए, आप फिर यही बात दोहराएंगे कि पीछे वाले जो गाने थे वो बहुत अच्छे होते थे, आज से 20 साल पहले जो गाने लिखे जा रहे थे। So, I don't miss anything.
0: इरशाद भाई ने जो कहा वो सिर्फ सच नहीं है, वो अनकंफर्टेबल सच है। हम 250 गाने सुनते हैं लेकिन बाकी के 50,000 का क्या, वो दब गए, they were forgotten। इसलिए पुराना जमाना परफेक्ट लगता है क्योंकि उसके बेकार गाने इतिहास ने ऑलरेडी डिलीट कर दिए। आज का म्यूजिक वीक नहीं है, आज का म्यूजिक बहुत ज्यादा है। एंड उसमें से भी एक चन्ना मेरेया है, एक सैयारा है, और ये वाला गाना भी है, क्या कमाल है। ये गाने अगर 1975 में आते तो आज हम इन्हें क्लासिक सॉन्ग्स कहते। मेरे लिए आज का पिक ऑफ द वीक भी इरशाद कामिल का ही है। रहमान साहब का म्यूजिक, इरशाद भाई ने क्या कमाल लिखा है, एक गाना जो ऑलरेडी क्लासिक बन चुका है, संग बाय मोहित चौहान। दिस इज तुम हो फ्रॉम रॉकस्टार। पिक ऑफ द वीक।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: नंबर 17

जाइए सजना बाय जैस्मिन सैंडलर्स, मैन शीज अनरेप्लिकेबल, वो सिर्फ वो है। लेकिन आज मैं आपके साथ एक अलग बात करना चाहता हूँ, म्यूजिक के बारे में, पर्सनल म्यूजिक के बारे में। जब भी आप कोई गाना सुनते हैं, एक मोमेंट आता है उस गाने में, एक छोटा सा मोमेंट जो सडनली आपका हो जाता है। देखो सबका अलग होता है और वही तो मैजिक है। जैसे दीवानियत को ही ले लो, दुनिया उस कोरस पर दीवानी है, वो मल्टी वॉइस बिल्ड, वो सब जानते हैं, सब गाते हैं, लेकिन मेरे लिए वो गाना शुरू होते ही खत्म हो जाता है, पहले पल में, पहली आवाज में। जो

ये यही विशाल की ये सॉफ्ट ऑलमोस्ट हेजिटेंट आवाज जैसे किसी दर्द को संभाल के रखा हो, वहां नहीं जाता जहां सब जाते हैं, सीधा अंदर पहुंचता है। और तब मुझे समझा कि गानों में सबका दरवाजा अलग होता है। टेक चन्ना मेरे यार, अब ये तो एक अलग ही चैप्टर है। अरिजीत सिंह का वो हुक, इट्स अ क्लासिक, इट्स इमॉर्टल, सब जानते हैं। लेकिन जब वो गाना खत्म होने लगता है, जब बाकी सब ऑलरेडी आगे बढ़ चुके होते हैं, मैं वहां रुक जाता हूँ।

ये रिपीट, ये बार बार कहना, जैसे कोई जाने से पहले एक बार और मुड़ के देख रहा हो। और फिर कुछ दिन पहले एक नया गाना आया और उसने वही किया जो विशाल की आवाज ने किया था, जो अरिजीत के उस आउट्रो ने किया था। एक स्पेसिफिक मोमेंट, एक स्पेसिफिक फीलिंग ऐसी जो मुझे लगा कि यार मैं तो यहाँ पहले भी आ चुका हूँ, इस दर्द को मैं पहले भी महसूस कर चुका हूँ।

ये वाला हिस्सा, बस ये वाला जो सडनली एक टाइम मशीन बन जाती है। और आज ये गाना पहली बार इस काउंटडाउन पे आ रहा है, नंबर 15 पे, फ्रॉम चांद मेरा दिल, दिस इज एतबार। सुनिए, पूरा सुनिए और ढूंढिए वो एक हिस्सा जो सिर्फ आपका होगा। नंबर 15।

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट. सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 12.

धुरंधर रॉकिंग द काउंटडाउन दिस वीक ऑन नंबर 14 एंड रणवीर के साथ यू गॉट सारा अर्जुन, एक बहुत ही प्रॉमिसिंग नाम, लेकिन उससे भी ज्यादा एक प्रॉमिसिंग एक्टर। और इस नाम ने मुझे याद दिलाई एक और सारा की, सारा अली खान। 2018 केदारनाथ, सुशांत सिंह राजपूत के साथ एक डेब्यू हुआ जिसे पूरी इंडस्ट्री ने नोटिस किया, मैंने भी उन्हें नोटिस किया, और उस फिल्म के बाद आई जेन्युइनली बिकेम अ फैन ऑफ सारा अली खान। लेकिन 2026 में पिक्चर क्या है? देयर इज अनन्या पांडे, सोलो फिल्म्स, बड़े बैनर्स, देयर इज जानवी कपूर, सोलो फिल्म्स, बड़े बैनर्स, एंड देन देयर इज सारा अली खान। पति पत्नी और वो दो में शी इज वन ऑफ द टू अफेयर्स। तीन लड़कियां, एक ही दरवाजा, तीन अलग अलग मंजिलें। और इस हफ्ते नंबर 13 पे एक गाना है कॉल्ड आवारा अंगारा फ्रॉम तेरे इश्क में, कृति सैनन का ये गाना है, जो इस जेनरेशन की सबसे कमिटेड एक्ट्रेसेस में से एक है। ये सब देख के दिल में एक सवाल उठता है यार कि सारा, वो केदारनाथ में दिखने वाली जो कमाल की टैलेंट थी, आखिर वो गई कहां? मैं आज भी मानता हूं वो टैलेंट अभी भी कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, लेकिन टैलेंट अकेला काफी नहीं होता, परफॉर्मेंसेस चाहिए होती हैं, चॉइसेस चाहिए होती हैं, एक कमबैक चाहिए होता है जो सिर्फ स्क्रीन पे ना। और उस कमबैक की याद, वो पहली बार, वो केदारनाथ वाली सारा अली खान। ये है इस हफ्ते का रिवाइंड ट्रैक ऑफ द वीक, जानेसार बाय अमित त्रिवेदी। टॉप 20 रिवाइंड।

0: Mirchi, it's hot. Suren ke saath, only on Mirchi, it's hot.
1: Number 12.

पति पत्नी और वो दो से रूप दी रानी अपने दूसरे हफ्ते में है ईयर ऑन नंबर 12, एक फिल्म चीटिंग के बारे में, glamorously, happily and comically. Hi, मैं हूँ सुरेन सुंदरम और अभी जो आने वाला है नंबर 11 पे वो भी उसी दुनिया से है. है जवानी तो इश्क होना है. गाने का नाम है ब्याह करवा दो जी. ग्लॉसी, कैची एंड इक्वली फॉरगेटेबल. और मैं जानता हूँ 2 महीने बाद ये गाना कोई नहीं सुनेगा. कैन आई बी ऑनेस्ट हियर? यार मैं थक गया हूँ. बीवी नंबर 1, नो एंट्री, दे दे प्यार दे, मर्डर, गहराइयां, कभी अलविदा ना कहना, और अब ये एक ही कहानी बार बार, अलग चेहरे, अलग गाने, लेकिन अंदर से बिल्कुल खोखला. और सच ये है कि हम, और मैं भी इस हम में शामिल हूं, हम अपने ऑडियंस को बेवकूफ समझते हैं. हम सोचते हैं कि ऑडियंस कॉम्प्लेक्स स्टोरीज नहीं चाहती, उन्हें चाहिए सिर्फ चमक, उन्हें चाहिए सिर्फ शोर. वो लिसनर जो कानपुर में बैठा हुआ है, वो लिसनर जो दुबई में है, वो उतनी ही गहराई मांगता है जितनी कोई मांग सकता है. लेकिन हम उन्हें देते हैं क्योंकि हम में हिम्मत नहीं है कॉम्प्लेक्स लिखने की, कॉम्प्लेक्स दिखाने की, कॉम्प्लेक्स फील करने की. और जब कहानी में गहराई नहीं होती तो गाने में भी नहीं होती. इसलिए सैयारा जैसा गाना एक याद बन जाएगी, मगर व्याह करवा दो जी नहीं बन पाएगी. फर्क सिर्फ फिल्म मेकर्स की गट्सी चॉइसेस का होता है, और अभी वो गट्स कहाँ हैं वो मुझे नहीं पता. लेकिन ये मेरा काम है हर हफ्ते इस स्टूडियो में आपके लिए बेस्ट गाने ढूंढना उस शोर में से. और इस हफ्ते नंबर 11 पे है ये व्याह करवा दो जी. तब है जवानी तो इश्क होना है.

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot. Suren ke saath, only on Mirchi, it's hot.
1: Number 10.

यार ये गाना चांद मेरा दिल जैसे ही चलता है मेरे दिमाग में एक और ही गाना ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। आई एम श्योर कि आपके दिमाग में भी वही गाना चल रहा होता है, क्योंकि कुछ कर नहीं सकते और शायद कुछ करना भी नहीं चाहते। क्या

यू नो कोइंसिडेंस क्या है कि ऋषि कपूर साहब की वो फिल्म हम किसी से कम नहीं, वो गाना, वो फीलिंग, इट फील्स सो फ्रेश इवन नाउ। और यही तो बॉलीवुड का सबसे बड़ा सीक्रेट है जो कोई नहीं बोलता। हमारे सबसे बड़े फिल्म मेकर्स, हमारे सबसे बड़े सुपरस्टार्स, वो भी उसी फीलिंग के पीछे भाग रहे हैं, इंक्लूडिंग ए सन रणबीर कपूर, क्योंकि पापा की विरासत मिली जीन्स में, सरनेम में, लेकिन पहली बड़ी फिल्म के लिए उन्होंने सीधा पापा का गाना ले लिया।

0: से जुदा।
1: बचना है हसीनो, पूरी एक जेनरेशन नाच रही थी और उन्हें खबर तक नहीं हुई कि ये तो उनके अंकल ऋषि कपूर का गाना है। एंड देन यू गॉट शाहरुख खान, जिन्होंने किया वही काम जो सिर्फ शाहरुख खान कर सकते हैं। उन्होंने ऋषि सर का एक और गाना लिया और उस पर एक पूरी दुनिया खड़ी कर दी।

0: शांति हो। 2007 और ब्लॉकबस्टर, एक गाना जो लगभग 50 साल पहले लिखा गया था पर शाहरुख ने उसे इमॉर्टल बना दिया। ऋषि कपूर इजंट विद अस एनीमोर, मगर बॉलीवुड उन्हें कभी भूलने नहीं देगा एंड आई लव देम फॉर इट। इट विल कीप हिम अलाइव। लेकिन ये कहानी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये यहाँ खत्म नहीं होती। नंबर 9 पर इस हफ्ते है सैयारा, जिसका दिल मोहित चौहान की उस आवाज में धड़कता है जो एक था टाइगर में सुनाई दिया था। पुरानी रूह नया टेक, हमेशा से हमेशा तक। दिस इज सैयारा बाय फहीम अब्दुल्ला ऑन नंबर 9।
1: नंबर 9।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
0: मिर्ची इट्स हॉट सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
2: नंबर 7
3: Say whoa!

0: ये था वाओ नंबर 7 लाउड कलरफुल 2026 की ब्लॉकबस्टर एनर्जी एग्जैक्टली एज एडवर्टाइज्ड। बट लेट मी टेक यू बैक टू 2006, 20 साल पहले। वो साल याद है, धूम, क्रिश, डॉन, लगे रहो मुन्ना भाई, बड़ी बड़ी फिल्म्स, बड़ा नॉइज और उससे भी बड़ी ओपनिंग्स। लेकिन आज 2026 में अगर मैं आपसे पूछूं कि उस साल की सबसे एवरलास्टिंग एल्बम कौन सी थी, वो कोई बड़ी फिल्म नहीं थी। वो एक मिड बजट फिल्म थी जिसका नाम था गैंगस्टर। कंगना रनौत, अनुराग बासु डायरेक्ट कर रहे थे, शाइनी आहूजा थे लीड में। वो कहानी हम दोबारा नहीं खोलेंगे। एंड ऑफ कोर्स यू हैड द मोस्ट म्यूजिक हैवी एक्टर इमरान हाशमी। लेकिन प्रीतम दा ने उस फिल्म के लिए जो म्यूजिक बनाया वो फिल्म से बड़ा निकला, कास्ट से बड़ा निकला, कॉन्ट्रोवर्सी से बड़ा निकला। और इस हफ्ते नंबर 6 पे है मैं और तू फ्रॉम धुरंधर 2, एक और गाना जो शायद अपनी फिल्म से बड़ा बन सकता है, लेकिन ये वक्त ही बता पाएगा। लेकिन गैंगस्टर के एक गाने ने वक्त का इंतजार नहीं किया, वो ऑलरेडी क्लासिक बन चुका था जिस रात वो रिलीज हुआ। 2 बजे की नींद, किसी का नाम, भीगी आंखें, ये सिर्फ गाना नहीं है, ये एक फीलिंग है जिसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। ऑन अ वेरी स्पेशल रिक्वेस्ट, दिस इज जेम्स विद भीगी भीगी।
1: स्पेशल रिक्वेस्ट सॉन्ग।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
0: मिर्ची इट्स हॉट सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
2: नंबर 5.

तेईस हफ्ते मैन रियली गहरा हुआ अरिजीत सिंह का गाना जो हर बार नया लगता है। लेकिन कुछ दिन पहले आई थिंक रात के 3 बज रहे थे और मैं बस सोने ही जा रहा था एंड फिर एक वर्जन सुन लिया।

तेरा हुआ। इस बंदे का कोई नाम नहीं है, ये अपना चेहरा तक नहीं दिखाता। बस YouTube पे एक चैनल है कॉल्ड मेलोडिक बैश, बस 3000 लोग जानते हैं इसे। That's it, that's his subscriber count। लेकिन वो अकूस्टिक गिटार जो इतना अग्रेसिव है, तार पे तार, जैसे कोई उस दर्द को अंदर रखने की आखिरी कोशिश कर रहा हो। The song isn't soft, it's not gentle, लेकिन इतना खूबसूरत है, इसलिए तो मैं इस गाने पे आके रुक गया। और वो आवाज, क्योंकि अरिजीत ने जिस तरह गाया है वहां पर भी दर्द है, लेकिन यहाँ अंदर से बिल्कुल एक अलग दर्द निकलता है। और यही तो म्यूजिक की सबसे बड़ी सच्चाई है, एक ही गाना हजार लोगों के हाथ से गुजर के हजार अलग कहानियां बन जाती हैं। मेलोडिक बैश की ये कहानी मुझे 3 बजे जागने पर मजबूर कर गई, लेकिन अभी के लिए इस फीलिंग के लिए एक और ऐसी आवाज जिससे मैं दूर नहीं हो पाता, नंबर 4 पे कोई और हो ही नहीं सकता, विशाल मिश्रा और उनकी दीवानियत। नंबर 4।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची इट्स हॉट रेडियो मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची इट्स हॉट
0: के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर टू

0: आरी आरी अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा। अगेन नंबर टू दिस वीक। माय नेम इज सुरेन सुंदरम और ये है इस काउंटडाउन का आखिरी सेगमेंट। तो मैं सीधा मुद्दे की बात पर आता हूँ। बॉलीवुड में आज जो दिख रहा है वो सच नहीं है, वो रिव्यू खरीदा गया है, वो ट्रेंड प्लांट किया गया है, वो पब्लिक इज लविंग दिस फिल्म, एक बिल है भाई जो सब भर रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद करण जौहर कह रहे हैं।
1: Bollywood should stop doing PR. It would be much better and they should let their achievements speak for itself. Because unfortunately, all of PR is now paid PR. So if you want to say you're looking gorgeous, you just have to pay. If you want to say that you're the best actor on planet Earth, you have to pay. So I think we are on overdrive mode where it comes to PR. But now everything is available at a price, and that is something that could be deeply upsetting, because then you really can't gauge what's connecting and what's not. Because like now you're looking at everything and you're like, are people really liking it or have they been paid for it? Like, I don't know. I can't tell half the time. Like, you know, many a time it's confusing me, and because even I'm sometimes paying for it. So I don't know.
0: I don't know. ये वही बंदा है जिन्होंने इस मशीन को बनाया और अब वो खुद नहीं जानते कि ये मशीन आखिर क्या कर रही है। जरा सोचिए, दैट इज द ट्रूथ। एंड देन और फिर एक और कहानी आती है। दिसंबर 5, 2025 धुरंधर, मार्च 19, 2026 धुरंधर 2। रणवीर सिंह कोई इंटरव्यू नहीं, आदित्य धर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। वॉज देयर पेड पीआर? एब्सोल्युटली जीरो। ऑर्गेनिक पीआर? Again, absolutely zero. सिर्फ एक फिल्म, उसके दो हिस्से और उसकी आवाज। 5 महीने बाद धुरंधर इज बॉलीवुड्स हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म एवर। और इस काउंटडाउन पे जो गाना नंबर वन है 12 हफ्तों के लिए, नो पेड पीआर, इट्स अ जेन्युइन बैंगर। करण ने कहा था, लेट योर वर्क स्पीक फॉर इटसेल्फ, एंड रणवीर एंड आदित्य धर डिड जस्ट दैट। They let their work scream for themselves. This is Shararat, Dhurandhar, 12th week on number 1.

0: सो ये था मिर्ची डॉट 20 का लेटेस्ट एपिसोड, 20 गाने एक जर्नी और आप जो इस सफर को मायने देते हैं। म्यूजिक वही जीतता है जो सच में लिखा गया हो, बाकी सब वक्त तय करता है। सो अंटिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट हियर ऑन द मिर्ची टॉप 20, सरेन ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट 98.3 98.3 98.3 मिर्ची, इट्स हॉट। मिर्ची, इट्स हॉट।

पार्टी पीपल वॉल्यूम फुल मूड ऑन टर्बो। आज का सीन सिंपल है, नो ओवर थिंकिंग, ओनली ओवर डांसिंग। और नाचने के बहुत सारे रीजंस भी है। पहला वाला रीजन है हमारे डीजे रिचर्ड का जन्मदिन, जो कि 1 मई को आता है, मतलब लेबर उनका और हैप्पीनेस हमारा, जो कि हमें मिलता है क्लब मिर्ची से। थैंक यू सो मच रिचर्ड फॉर मेकिंग आवर वीकेंड्स फैंटाब्यूलस। एंड हियर्स योर लिसनर्स ड्री राइड म्यूजिक, श्री जॉय भट्टाचार्य, सुदीप्त रॉय, डी वी जे अर्व, ए के डी, महेश चौगले एंड शाहिब घोष। विशिंग यू अ हैप्पी बिलेटेड बर्थडे, एंड मे आई एड माय नेम टू मिर्ची और योंतिका, गिविंग यू लोड्स ऑफ लव एंड अ वार्म हग। इश्क भी जल रहा है और डांस फ्लोर भी चलेगा, सो लेट्स लाइट इट अप।

कुछ आज ग्रूव डिसाइड करेगा. द ट्यून इज टंटनन क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका. एंड आई एम श्योर विद दिस काइंड ऑफ म्यूजिक वी आर ऑल गोइंग टू गेट लकी टुनाइट. Like the legend of the thing.

बैक अगेन दिल में जो है बोल दे क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयो और इसी बीट पे छोड़ दो यार खुद को डांस फ्लोर के नाम पे सौंप दो चुप क्यों रहे।

0: Mirchi, it's hot.
1: Ladies and gentlemen, we are gonna go. We are

रंगीला मूड हो या हार्ड ब्रेक बॉस, वी ऑल विल सर्वाइव एंड डांस. डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका विथ यू ऑन क्लब मिर्ची. दिस इज द साउंड ऑफ द फ्यूचर.

इश्क बिना भी पार्टी चलती है। क्लब मिर्ची है शो का नाम। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका आपके साथ। बस बीट्स स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बाकी लिरिक्स अ लॉट ऑफ टाइम्स ना तुम जानो ना हम।

क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका। आप बोलो या ना बोलो, ग्रूव एंड बीट्स यहाँ पे बोलती है नॉन स्टॉप। एंड अगर आप सोच रहे हो कि आप ब्रेक लोगे थोड़ा, सो जाइए सजना।

0: Mirchi, it's hot.
1: Ladies and gentlemen, we are gonna go
2: on a ride.

बैक अगेन क्लब मिर्ची जा रही है डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका आपके साथ। और अगर बॉडी मूव नहीं हो रही है तो वाईफाई ऑफ करके डांस ट्राई करो, रेडियो पे तो क्लब मिर्ची का प्लेलिस्ट सॉलिड है। डीजे रिचर्ड इज द किंग ऑफ मे, हिज बर्थडे वाज ऑन 1st, सो हे हैप्पी बेलेटेड बर्थडे वंस अगेन रिची।

smells like teen spirit. Club Mirchi with DJ Richard and Mirchi और योन देखा and rock हो या टपरी, vibe सब जगह same ही है, इसीलिए अभी पान की दुकान.

के नशे में हर वीकेंड पे आ ही जाते हैं डीजे रिचर्ड एंड हिज प्लेलिस्ट ऑन क्लब मिर्ची। बाय द वे हैप्पी बिलेटेड बर्थडे रिची। डीजे रिचर्ड के साथ मैं भी रहती हूँ, मेरा नाम है मिर्ची ओयो अंतिका। आप

0: हर बार दिल टूटेगा और बीट ड्रॉप होगी ऑन क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका। I just might play दर्दे डिस्को नाउ फॉर यू। लेट्स गो।
1: वो हसीना को

0: ready for this.
1: मैं और तू रिचर्ड एंड मिर्ची ओयो देगा काफी है हम और हमारे साथ क्लब मिर्ची एंजॉय कर रहा है पूरा देश इनफैक्ट इंटरनेशनल है बॉस क्लब मिर्ची जा रही है सैया जी द बेसलाइंस टू गुड

0: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाने चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये ये ये ये
1: यू आर फॉलिंग विद ओयोंटिका एंड डीजे रिचर्ड।

रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंदिगा लाइफ हो या डांस फ्लोर, थोड़ा कंफ्यूजन जरूरी है। और अगर करना है क्लियर आपके थॉट्स और दिखाना है प्यार हम लोगों को, आ जाइए हमारे सोशल मीडिया पे DJ Richard Official, that's him, and ओयोंदिगा AYNTIK, that's me on Insta and Facebook।

हर बार दिल टूटेगा और बीट ड्रॉप होगी ऑन क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका। आई जस्ट माइट प्ले दर्दे डिस्को नाउ फॉर यू, लेट्स गो।

0: now ready for this.
1: मैं और तू रिचर्ड एंड मिर्ची ओयो देगा काफी है हम और हमारे साथ क्लब मिर्ची एंजॉय कर रहा है पूरा देश. इनफैक्ट इंटरनेशनल है बॉस. क्लब मिर्ची जा रही है सैया जी. द बेस लाइन्स टू गुड.

0: voices in my head go
1: आपके साथ ऑन लव मिर्ची।

सारी फेंक लगे, देख तुझको ब्रेक लगे, दूर दूर से ठीक है रानी पास आऊं तो सेक लगे।

नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये।

I know I should sleep, but the voices in my head go.

रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयो देगा लाइफ हो या डांस फ्लोर, थोड़ा कंफ्यूजन जरूरी है और अगर करना है क्लियर आपके थॉट्स और दिखाना है प्यार हम लोगों को, आ जाइए हमारे सोशल मीडिया पे डीजे रिचर्ड ऑफिशियल दैट्स हिम एंड ऑयो देगा AYNTIK दैट्स मी ऑन इंस्टा एंड फेसबुक।

Leon Plumlee. Finished business.

Mirchi. It's hot. Saathi re, thoda theher ja, abhi raaste

बरसात है। आज रात

I love you all. दोस्तों ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूँ घर से।

0: The views expressed in the Devdutt Patnaik show are the hosts alone, not the channels.
1: The Devdutt on Radio Mirchi.
2: The Devdutt Patnaik show.
1: The Devdutt Patnaik show.
0: On Radio Mirchi, it's hot.
3: Hi everyone, aap sun rahe hain The Devdutt Patnaik show on Radio Mirchi.
1: Devdutt ka day starter. Day starter.
3: तो आज हम हनुमान के बारे में बात करेंगे। क्यों हनुमान? बिकॉज यू नो टुडे मॉर्निंग मैं सूर्य नमस्कार कर रहा था। डॉक्टर्स हैव टोल्ड मी कि सूर्य नमस्कार सुबह करना ही है बिकॉज आई ट्रैवल अ लॉट। और मैंने ये सुना है कि सूर्य नमस्कार वॉज डिजाइंड बाय हनुमान जी, और हनुमान जी ने ये सूर्य नमस्कार किया था क्योंकि उनके गुरु थे सूर्य भगवान। द सन वॉज हिज टीचर, हिज गुरु। तो एज ए दक्षिणा उन्होंने सूर्य नमस्कार की निर्माण की थी। तो जब मैं सूर्य नमस्कार आज कर रहा था तो हनुमान जी की याद आ रही थी, एंड आई सेड यू नो व्हाट बेटर वे टू स्टार्ट द डे देन बाय डिस्कसिंग हनुमान जी के बारे में, उनकी कहानियों के बारे में। क्योंकि देवदत्त पटनायक शो में हम क्या डिस्कस करते हैं? हम वेद पुराण, हमारे रीति रिवाज के बारे में डिस्कस करते हैं, यज्ञ हवन पूजा का डिस्कशन करते हैं, उत्सव के बारे में डिस्कस करते हैं, हमारे कल्चर के बारे में डिस्कस करते हैं। जो आध्यात्मिक कल्चर है, जो भारत की एक परंपरा है, हमारी संप्रदाय है, एंड दीज थॉट्स इन अ वेरी पॉजिटिव सिंपल वे टू अंडरस्टैंड कि ये हमारे डे टू डे लाइफ में कैसे इंप्रूव कर सकता है। यू नो सूर्य नमस्कार फॉर एग्जांपल हेल्प्स आवर बॉडी, एंड यू नो यू लुक एट द मॉर्निंग राइजिंग सन एंड द सन इज टेलिंग यू गेट अप एंड मूव ऑन, एंड दैट्स व्हाट आई डू। सो आज पूरे दिन, आज पूरे शो में हम डिस्कस करेंगे हनुमान जी के बारे में, मारुति के बारे में, अंजनेय के बारे में, उनके अलग अलग कहानियों के बारे में। सो स्टे ट्यून्ड ऑन द देवदत्त पटनायक शो ऑन मिर्ची।
2: Show.
0: Mythology का वो सबसे इम्पोर्टेंट शब्द जो सबसे पहले हनुमान के मुंह से निकला, क्या था? बताएंगे देवदत्त।

0: वेलकम बैक टू द देवदत्त पटनायक शो ऑन रेडियो मिर्ची।
1: देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची,
2: द देवदत्त पटनायक शो,
1: कल भी आज भी
2: ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आज हम हनुमान जी के बारे में बात कर रहे हैं, और हनुमान जी की जब बात करते हैं तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडियाज जो हमारे मन में आना चाहिए इज अबाउट स्ट्रेंथ, बिकॉज हनुमान जी इज वेरी स्ट्रांग। यू नो, एक चीज हम लोग हमेशा बोलते हैं कि वी हैव बिकम वेरी मॉडर्न, यू नो, आजकल लोग बहुत मॉडर्न हो गए हैं, पहले जमाने में हम लोग बैकवर्ड थे, अभी हम यू नो वी हैव बिकम कूल बिकॉज हमारे पास मोबाइल फोन है, हमारे पास गाड़ियां हैं। बट यू नो, एक चीज कनेक्ट करता है सब कुछ, यू नो, कल भी आज भी सब समय, इट ऑल टाइम्स, देयर इज वन थिंग व्हिच कनेक्ट्स ऑल ह्यूमन बीइंग्स। मनुष्य जो है ना वो असुरक्षित होता है, इनसिक्योर होता है, एंड वी आर ऑल इनसिक्योर। कुछ ना कुछ, जितनी अमीर हो, गरीब हो, मेल हो, फीमेल हो, कोई भी हो, ह्यूमन बीइंग्स आर इनसिक्योर। और जब हम इनसिक्योरिटी की बात करते हैं तो भगवान की बात आती है, और हिंदू धर्म में हनुमान जी को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है, क्योंकि ही इज, जैसे बनारस में कहते हैं, वो संकट मोचन है, ही टेक्स अवे द प्रॉब्लम्स, हमारे जो असुरक्षता है ही टेक्स इट अवे, एंड ही इज अ वेरी यूनिक गॉड, बिकॉज एक बलवान तो है ही, उनके हाथ में तो गदा होता है, एंड इज वेरी वेरी स्ट्रांग, बट एट अनदर लेवल ही इज ऑल्सो एन इंटेलेक्चुअल। वो कविताओं से जुड़े हुए हैं, लिटरेचर से जुड़े हुए हैं, कहते हैं कि पहली बार संस्कृत शब्द उन्हीं के मुंह से निकला था, सो ही इज अ विद्वान एज वेल एज बलवान, एंड वी ऑलवेज टेंड टू सेपरेट इट। हम हमेशा बोलते हैं कि जो बलवान होता है वो विद्वान नहीं हो सकता, और जो विद्वान होता है वो बलवान नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? यू कैन गो टू द जिम एंड बी यू नो स्ट्रांग एंड डू एक्सरसाइज एंड बी गुड इन स्पोर्ट, बट यू कैन ऑल्सो बी गुड इन स्टडीज, एंड यू कैन बी अ स्मार्ट गाय, यू कैन गो टू द बेस्ट कॉलेजेस, इंजीनियरिंग, कॉमर्स, आर्ट्स, बिजनेस, यू नो, हम ये डिवाइड करते रहते हैं दुनिया को। और आई थिंक ये आइडिया है, मैं जब भी हनुमान के बारे में सोचता हूँ मैं बोलता हूँ कि कल भी वो रेलिवेंट थे, आज भी वो रेलेवेंट हैं, क्योंकि वो बलवान विद्वान हैं, वो हमारे भीतर के पशु को जागृत करते हैं, रिमाइंड्स अस दैट देयर इज एन एनिमल इनसाइड अस, और हमें मनुष्य बनना है। यू नो, ही इज अ वानर, वन का नर, मींस सम पीपल से इट इज मंकी, सम पीपल से इट इज एप लाइक मैन, सम से इट इज अ ट्राइबल पर्सन, लेकिन क्या है कि ये एक कॉन्सेप्ट है। आर जर्नी, हमारी जो यात्रा है, इज फ्रॉम पशु टू पुरुष एंड टू बिकम बलवान एंड विद्वान। ऐसे ही बातें हम डिस्कस करते रहेंगे ऑन द देवदत्त पटनायक शो ऑन मिर्ची। स्टे ट्यून्ड, बिकॉज लॉट्स ऑफ स्टोरीज आर कमिंग योर वे। वी आर गोइंग टू डिस्कस हनुमान जी के स्टोरीज, नॉट जस्ट फ्रॉम रामायण बट फ्रॉम मेनी फोक ट्रेडिशंस। तो स्टे ट्यून्ड,
1: देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची,
2: द देवदत्त पटनायक शो।
3: हनुमान ने कैसे तोड़ा रावण का घमंड, बताएंगे देवदत्त। कीप लिसनिंग।

0: वेलकम बैक टू द देवदत्त पटनायक शो ऑन रेडियो मिर्ची। आज हम हनुमान के बारे में बात करेंगे। माय फेवरेट हनुमान स्टोरी इज जब हनुमान रावण को मिलता है लंका में, एंड दैट्स अ वेरी एक्साइटिंग स्टोरी। तो रावण इज द किंग ऑफ लंका, राक्षसों के राजा हैं, ही इज एजुकेटेड, ही नोज नाट्य शास्त्र, उन्हें गंधर्व विद्या, उनको वेदों का ज्ञान है, उनको ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान है, वास्तु शास्त्र का ज्ञान है, ही इज एजुकेटेड एंड इज वेरी पावरफुल, उनके पास पुष्पक विमान है, वो सोने के लंका में राज करते हैं, और उनको पता चलता है कि उनके अशोक वाटिका में एक बंदर ने कुछ तो गड़बड़ किया है और बंदर को पकड़ के लोग लेके आ रहे हैं, एक बंदर कौन है। और जब बंदर आता है उसके सामने, वो बंदर संस्कृत में बात करता है उनके साथ, एकदम परफेक्ट संस्कृत में बात करता है। तो ही शॉक्ड बिकॉज संस्कृत ब्राह्मणों की भाषा है, विद्वानों की भाषा है, ये बंदर कैसे बात कर सकता है। और फिर वो कहता है, बंदर बहुत ही बहुत डेंजरस शब्द बोलता है, कि कहता है कि मैं राम का दूत हूँ, आई एम अ मैसेंजर ऑफ राम, तो अगर मैं दूत हूँ तो यू शुड ट्रीट मी लाइक अ दूत, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ, आप मुझे बांध के लाए हो यहाँ पे, मुझे एक आसन दीजिए, मेरा सत्कार कीजिए ताकि मैं आपको एक मैसेज दे सकूँ। और रावण कहता है कि बंदर, दूत, राम, ये कौन है। एंड ही इज लाइक क्वाइट डिस्गस्टेड, बहुत डिसमिसिव होता है कि चल चल अपने आप को समझ रहा है राम दूत। तो हनुमान जी बोलते हैं कि देख, कोई भी तुम्हारे घर में आता है ना, तुम उसे सत्कार करते हो, इंसल्ट नहीं करते हो, मैं तुम्हारे घर पहले बार आया हूँ, यू शुड ट्रीट मी नाइसली। और अगर तुम यू डोंट ट्रीट मी नाइसली, मेरा इतना सेल्फ रिस्पेक्ट है कि मैं अपने आप को अच्छे से मैनेज कर लूंगा, तुम अगर मुझे आसन नहीं दोगे तो मैं अपने आप को आसन दे दूंगा। और अपनी पूंछ से वो एक आसन बनाते हैं, और एक ऐसे आसन बनाते हैं जो रावण के सिंहासन से ऊपर होता है, मतलब रावण जो हमेशा सब लोगों को नीचे देखता है वो हनुमान जी को ऊपर देखता है, और उसका घमंड वहां पे इज डिस्ट्रॉयड, कि ये बंदर संस्कृत बोलने वाला उसको एक सेकंड में बताता है कि भैया तेरी औकात क्या है। ये जो स्टोरी है ना, बहुत ही सिंपल स्टोरी है लेकिन सबको समझ में आता है। बताने से पता चलता है कि रावण हमारी जिंदगी में बहुत, रावण होते हैं, हम भी रावण होते हैं, सबको हम चाहते हैं कि सब हमारे नीचे बैठे रहें, हम लोगों को वी जज पीपल कि कैसे लोग होने चाहिए, बट सामने वाला हनुमान हो सकता है और वो हमें औकात दिखा देगा बहुत ही शांति से। और ये कहानियों में से ऐसी छोटी छोटी ज्ञान मिलती है, हमारा जो संस्कृति है, भारत धर्म है, हमारा जो कल्चर है, वो कहानियों के माध्यम से आता है, जैसे ये सो एक छोटी सी एपिसोड रामायण की, हनुमान जी और रावण के बीच में। एंड ऐसे ही स्टोरीज आई विल बी डिस्कसिंग ऑन द देवदत्त पटनायक शो ऑन मिर्ची, तो स्टे ट्यून्ड।
1: ऑन रेडियो मिर्ची
2: द देवदत्त पटनायक शो।
3: हनुमान जी को सिंदूर क्यों लगाया जाता है, बताएंगे देवदत्त। कीप लिसनिंग।

0: वेलकम टू द देवदत्त पटनायक शो, जहाँ पे हम हनुमान को डिस्कस कर रहे हैं, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गॉड्स इन हिंदुइज्म।
1: ऑन रेडियो मिर्ची
2: द देवदत्त पटनायक शो,
1: कॉलिंग देवदत्त
2: ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: गांव-गांव में उनकी मूर्तियां होती हैं, पूजा होती है। सो इफ आई एम श्योर यू हैव मेनी क्वेश्चंस ऑन हनुमान, तो जो भी क्वेश्चन है प्लीज पिक अप द फोन एंड आस्क मी द क्वेश्चन। आई एम एक्साइटेड टू हियर फ्रॉम यू। हेलो, देवदत्त हियर।
3: हाय, माय नेम इज अक्षता एंड आई एम कॉलिंग फ्रॉम मुंबई। मेरा क्वेश्चन ये है कि हनुमान जी को सिंदूर क्यों लगाते हैं, इसके पीछे कोई लॉजिक है क्या?
0: थैंक्स अक्षता फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये जो सिंदूर है, लाल रंग जो होता है, ये भारत में से मंगल मतलब ऑस्पिशियस सिंबल माना जाता है, ऑस्पिशियस कलर माना जाता है, और हनुमान जी को हम मंगल मूर्ति भी मानते हैं। सो इट इज़ अ सिंबल ऑफ ऑस्पिशियसनेस, इसलिए उनको लाल रंग दिया जाता है। जैसे गणपति जी को भी मंगल मूर्ति मानते हैं, इसलिए उसके लाल रंग दिया जाता है। सो लाल रंग मांगल्य, मांगल्य इज प्रॉस्पेरिटी, एफ्लुएंस, गुड लक, चार्म, तो ये देवी के साथ जुड़ा हुआ है। और नॉर्मली लाल रंग हम देवी को जोड़ते थे, और बोथ गणेश एंड हनुमान आर लिंक्ड टू द शाक्त परंपरा, और इसलिए हनुमान जी की मूर्ति को मांगल्य बनाने के लिए, नहीं तो वो बहुत ही यू नो वेरी मैस्कुलिन इमेज जो है, वायलेंट इमेज है, बिकॉज उसके हाथ में वेपन्स हैं एंड ही इज फाइटिंग। लेकिन जब आप लाल लगाते हो तो वो शुभ बन जाता है, दैट इज द रीजन। आजकल लोग ऑरेंज कलर दे रहे हैं जो वैरागियों का रंग है, लेकिन मंगल रंग इज लाल, इसलिए शादी का जोड़ा भी लाल होता है, चूड़ियां लाल होती हैं, दैट इज द रीजन। ऑफकोर्स देर आर स्टोरीज की उन्होंने देखा कि सीता जी लाल रंग सिंदूर डाल रही हैं, इसलिए उन्होंने अपने पूरे शरीर को ढक दिया, ये सब लोक कथाएं हैं। लेकिन क्रियाओं की तरफ, फ्रॉम रिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू, लाल जहां लगा जाएगा, जैसे अलता होगा, ये होगा, इसे मंगल का शुभ है, शाक्त सिंबल है, देवी का चिन्ह है। That is the purpose.
3: All right. Thank you so much for the answer. Thank you.
0: Welcome, Akshata. तो अक्षता का क्वेश्चन वॉज अबाउट सिंदूर रंग, और ये लाल रंग जो होता है ये ट्रेडिशनल कलर है जो हनुमान जी के साथ जुड़ा हुआ है। नॉर्मली जो मेल गॉड्स होते हैं उनको लाल रंग वेरी रेयरली दिया जाता है, क्योंकि हनुमान जी को देवी का सेवक माना गया है, वो प्रॉस्पेरिटी लेके आते हैं, इसलिए लाल रंग दिया जाता है।
2: क्या है हनुमान और पंचमुखी हनुमान में अंतर, बताएंगे देवदत्त। कीप लिसनिंग।

0: वेलकम बैक टू द देवदत्त पटनायक शो ऑन रेडियो मिर्ची.
1: देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची.
2: द देवदत्त पटनायक शो.
1: द देवदत्त पटनायक शो
2: ऑन रेडियो मिर्ची. इट्स हॉट.
0: सो नाउ आई वांट टू डिस्कस माय वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इमेजेस ऑफ हनुमान, जो पंचमुखी हनुमान जिसके कहते हैं. तो पंचमुखी हनुमान की मूर्ति अगर आप देखे होंगे तो इट इज नॉट, यू नो, इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टैचू. नॉर्मली हनुमान जी की मूर्ति राम के मंदिर में होती है और वो वहां पे एक सेवक के रूप में, एक दास के रूप में हाथ जोड़ के बैठे रहते हैं राम के चरण पे. लेकिन पंचमुखी हनुमान जो होता है वो मंदिर में केवल हनुमान जी की मूर्ति होती है वो, और उनके दो हाथ नहीं, उनके 10 हाथ होते हैं और उनके एक सर नहीं, 5 सर होते हैं और एक ही सर वानर का रूप लेता है. बाकी 4 जो है, एक घोड़े का होता है, एक शेर का होता है, एक वराह या जंगली सुअर का होता है और एक गरुड़ का होता है. पंचमुखी हनुमान की स्टोरी हमें अद्भुत रामायण से आती है. अद्भुत रामायण में कहते हैं कि राम गेट्स डिसअपीयर्स और उसे पाताल लोक में कोई लेके चला जाता है और हनुमान जी हैज नाउ टू डू एवरीथिंग एंड फाइंड रेस्क्यू राम. तो स्टोरी है हाउ डज हनुमान गो टू पाताल लोक. इसलिए पंचमुखी हनुमान को कभी कभी लोग पाताली हनुमान भी बोलते हैं और पाताली हनुमान कुछ मंदिरों में उन्हें अपसाइड डाउन रखा जाता है बिकॉज वो पाताल में गए हैं. लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग, ये पंचमुखी क्यों बने हैं? क्योंकि हनुमान जी वहां पे डिस्कवर्स कि वो केवल वानर नहीं है, उनके अंदर बहुत क्षमता है. वो गरुड़ के जैसे भी काम कर सकते हैं, वो वराह के जैसे काम कर सकते हैं, वो शेर की भांति काम कर सकते हैं, वो घोड़े के जैसे भी काम कर सकते हैं. उनके अंदर कितनी कैपेबिलिटीज हैं. ये मूर्ति है दिखाने के लिए कि जो एक वानर है वो महाबली कैसे बना. सो रामदास से महाबली की यात्रा, द ट्रांसफॉर्मेशन. जो सिंपल एक रामदास था जो इंस्ट्रक्शंस लेता था, वो कार्य करता था, जो राम बोलते थे वो करते थे, लेकिन पंचमुखी हनुमान के जगह में वो कर्ता बन जाते हैं. ही इज द पर्सन हु टेक्स इनिशिएटिव, ही सॉल्व्स प्रॉब्लम्स और अंदर की अपनी जो पोटेंशियल है डिस्कवर करते हैं. आई एम श्योर आपके अंदर भी बहुत पोटेंशियल है टू डिस्कवर एंड यू मस्ट फाइंड दिस पोटेंशियल सो दैट द होल डे यू फाइंड द हनुमान इनसाइड यू एंड क्रॉस द ओशन टू सक्सेस. So, best wishes and stay tuned for more interesting questions and answers and stories on the Devdutt Patnaik show on Mirchi.
1: The Devdutt on Radio Mirchi.
2: The Devdutt Patnaik show.
3: हमें ही नहीं, हनुमान को भी मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है. कब और क्यों? बताएंगे देवदत्त.

0: वेलकम बैक टू द देवदत्त पटनायक शो ऑन रेडियो मिर्ची। यू नो, मैं हनुमान के बारे में बहुत लिखा हूँ मेरी किताबों में, मेरे एसेज में। मैंने हनुमान चालीसा के ऊपर एक किताब लिखी है, माय हनुमान चालीसा, जहाँ पे यू नो हर जो दोहा चौपाई उसके अंदर इतना ज्ञान है हनुमान जी के कथाओं में कि हर लाइन में ज्ञान होता है, एक आइडिया होता है, एक थॉट होता है, एक विश, यू नो, यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि हनुमान जी के माध्यम से हमें कितनी चीज़ें बताई जा रही हैं। सो मेनी आइडियाज आर बीइंग प्रेजेंटेड टू अस। और ऐसे स्टोरीज जब आते रहते हैं तो एक स्टोरी है यू नो विच इज़ यू नो लिंक्ड टू हनुमान, विच यू नो ऑलवेज रिमाइंड्स मी दैट भगवान भी कितने हम्बल होते हैं हमारे सामने। कहते हैं कि जब हनुमान जी यू नो लंका के लिए जा रहे थे, देन ही वाज़ यू नो वो शोर ऑफ समुद्र के बगल में थे और सब बोल रहे थे, ऑल वानर्स वर गैदर्ड ओवर देयर, सामने समुंदर दिखाई दे रहा था, द ब्लू सी स्ट्रेचिंग अक्रॉस, कहीं बियॉन्ड होराइजन में सोने की लंका थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कितने दूर है होने वाला है ये। तो सब वानर बोल रहे थे इतना दूर तो हम छलांग नहीं मार सकते, कोई बोल रहा था हमें इतना योजन मीन्स इट्स अ मेजरमेंट टूल कि कितने माइल्स होते हैं यू नो, तो योजन कितने योजन तुम जा सकते हो। सो कोई बोल रहा था हमें 10 योजन जा सकते हो, कोई 50 योजन, तो हनुमान कुछ नहीं बोल रहा था, चुप बैठा था। तो जांबवन जो बैर जो भालू थे वो जाके हनुमान जी से पूछते हैं कि तू कितना कर सकता है, एंड हनुमान से मुझे पता नहीं मेरे में कितनी ताकत है। इमेजिन हनुमान जी बोल रहे हैं कि मुझे पता नहीं मैं क्या कर सकता हूँ, ही इज फुल ऑफ डाउट। एंड दैट टाइम हनुमान जी को जांबवन उनका वर्णन करते हैं और उनकी पूजा करते हैं और बोलते हैं कि आप कितने महान हो, डू यू नो हाउ ग्रेट यू आर, आप शिव जी के एक अवतार हो, आप सूर्य भगवान से आपने ज्ञान प्राप्त किया है, वायु आपके पिता हैं, तो यू हैव ऑल द विजडम, आप प्रिय हो राम जी के, उन्होंने आपको भाई जैसे माना है। सो इतना स्ट्रेंथ है, सो ही कीप्स प्रेजिंग हिम एंड कीप्स प्रेजिंग हिम। एंड हनुमान जब ये सुनते हैं, ही स्टार्ट्स ग्रोइंग इन साइज, ही बिकम्स बिगर एंड बिगर एंड बिगर एंड बिगर एंड बिगर, ही बिकम्स सो बिग कि उनकी जो सर बोलते हैं कि इट गोज बियॉन्ड द स्काई, इतने लंबे हो जाते हैं, पहाड़ भी उनके सामने छोटे छोटे दिखने लगते हैं। एंड देन वो छलांग मार के जाते हैं लंका के तरफ। और मतलब हनुमान जी को भी टू डिस्कवर हिज पावर्स कुछ मोटिवेशन की जरूरत होती है। एंड वी ऑल हैव अ हनुमान इनसाइड अस, हम सबको मोटिवेशन चाहिए। यू नो लोग हमेशा हमें हमारी नेगेटिव पॉइंट्स बताते हैं कि अरे तू ये नहीं करता है, तू वो नहीं करता, तू ये नहीं करता है। बहुत कम लोग होते हैं जो हमें हमें पॉजिटिव पॉइंट्स देते हैं। यू नो भगवान की जब आरती जब हम करते हैं, जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, चालीसा में देखिए भगवान के पॉजिटिव पॉइंट्स बताते हैं, वैसे ही जब हम आरती करते हैं तो भगवान के पॉजिटिव पॉइंट्स बताते हैं। मतलब हर आदमी को आरती पसंद है, थोड़ा एक आध बार मेरे जो पॉजिटिव पॉइंट्स है उसको आप प्लीज वर्णन कीजिए। टेल योर फ्रेंड्स दैट दे आर गुड एट मे बी इन पोएट्री, मे बी दे आर गुड एज क्रिएटिव पीपल, दे आर वेरी ऑर्गेनाइज, दे ड्रेस वेल, छोटी छोटी बातें उनके अंदर जो हनुमान है उसे जागृत करते हैं। आई थिंक दैट इज द लेसन वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी ऑफ हनुमान बिकमिंग लाइक अ सुपरमैन, जंपिंग अक्रॉस द स्काइज एंड गोइंग टू सोने की लंका। तो ऐसे ही आइडियाज हम डिस्कस करते रहेंगे ऑन द देवदत्त पटनायक शो ऑन मिर्ची।
1: देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची।
2: द देवदत्त पटनायक शो।
3: हनुमान की जाति से जुड़ा एक और सवाल जब उठा तो क्या कहा देवदत्त ने? कीप लिसनिंग।

0: आज हम हनुमान के बारे में बात कर रहे हैं ऑन द देवदत्त पटनायक शो।
1: देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची।
2: द देवदत्त पटनायक शो
1: कॉलिंग देवदत्त
2: ऑन रेडियो मिर्ची। इट्स हॉट।
0: जब जिज्ञासा होती है तो प्रश्न आते हैं और प्रश्न से ही अच्छे उत्तर मिलेंगे। सो प्लीज आस्क मी क्वेश्चंस ऑन हनुमान। पिक अप द फोन राइट नाउ एंड आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल।
3: हेलो
0: हेलो देवदत्त हियर।
3: हेलो देवदत्त सर।
0: Hi.
3: Hi, मेरा नाम भास्कर है and I'm a huge fan of yours.
0: Thank you so much.
3: और मेरा एक क्वेश्चन था
0: जी
3: हनुमान को लेके।
0: तो
3: हनुमान जी की जाति को लेके कॉन्ट्रोवर्सी हुई है, क्या रामायण में हनुमान की जाति की बात कहीं पे की गई है?
0: देखिए, जो शास्त्री होते हैं, जो पंडित होते हैं, इनसे दूर रहते हैं, तो ये राजनीति की बात है एंड यू नो वी शुड नॉट टेक दिस सो सीरियसली। हमारे जो शास्त्र है वो आत्मज्ञान के बारे में बात करते हैं और जहाँ आत्मज्ञान होता है वहाँ ऊंचा नीचे की बात नहीं होती। हनुमान जी इज वानर और वो महाबली हैं एंड ही इज, उनके जात से कोई संबंध नहीं है। एंड वी शुड बी वेरी केयरफुल ऑफ दीज पोलिटिकल गेम्स दैट आर बींग प्लेड। आई पर्सनली कीप अवे। जितने भी शास्त्र मैंने पढ़े हैं, मैंने एक चीज सीखा है, जहाँ आत्मज्ञान होता है वहाँ जात पात की बातें नहीं होती। जहाँ आत्मज्ञान नहीं होता, जहाँ अहंकार होता है, वहाँ जात पात शुद्ध अशुद्ध की बातें होती हैं। तो हमारे शो में हम ज़्यादातर आत्मज्ञान की बातें करेंगे, पॉजिटिव एनर्जी, मॉडर्न सोसाइटी, इक्वालिटी एंड जस्टिस। वी डोंट वांट टू डिस्कस दिस जाति, सो यू शुड नॉट बॉदर अबाउट दिस। ये पॉलिटिक्स होने दो ना शास्त्रों में। या सो दैट्स, आई थिंक वी शुड जस्ट बी मोर मॉडर्न 21st सेंचुरी इंडियंस एंड दैट्स माई सजेशन। बेस्ट ऑफ लक।
3: थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।
0: वेलकम। तो हनुमान विद्वान है, बलवान है, और जो विद्वान है उसके पास आत्मज्ञान होता है। जिसके पास आत्मज्ञान होता है वो जात पात में विश्वास नहीं करता।
1: देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची।
2: द देवदत्त पटनायक शो। क्यों जुड़े हैं हनुमान शिव विष्णु और देवी के साथ, बताएंगे देवदत्त। कीप लिसनिंग।

गगन घिरे बदरा, सगन लता पेड़ों से डगर डगर वन उपवन, छाया है अंधियारा। गगन घिरे बदरा, सघन लता पेड़ों से डगर डगर वन उपवन, छाया है

कन्हाई, ले जाओ इसको घर। राधे ले जाओ इसको घर, राधे ले जाओ इसको घर। देश मान कर चली राधिके ले माधव को, यमुना तट लीला निकुंज में राधा माधव की यह लीला, राधा माधव की लीला सर्वोत्तम हो।

0: वेलकम बैक टू द देवदत्त पटनायक शो, जहाँ पे हम हनुमान जी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इन हनुमान जी के बारे में कितना बताना है आपको, लेकिन क्या करें, समय किसी के लिए रुकता नहीं है, शो अभी खत्म होने वाला है। और एक बात मुझे हनुमान जी के साथ बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि हनुमान जी एक ही भगवान है, एक ही देवता है जो शिव जी के साथ जुड़े हुए हैं, विष्णु जी के साथ जुड़े हुए हैं और देवी के साथ जुड़े हुए हैं। अब शिव के मंदिर में जाओ तो हनुमान जी की मूर्ति कहीं मिल जाएगी, कहते हैं कि वो शिव जी के अंश हैं। अब विष्णु के मंदिर जाओ तो रामदास हैं, वो कृष्ण के साथ भी जुड़े हुए हैं। और अगर देवी मंदिर में जाओ, शेरावाली के मंदिर में जाओ, तो द्वारपाल के रूप में वहां पे खड़े होते हैं ध्वजा पकड़ के। तो दिस इज यू नो अ गॉड इज वेरी पॉपुलर, बहुत पॉपुलर है उनके सिंप्लिसिटी की वजह से। वो विद्वान है, वो बलवान है, बट इज ऑल्सो अहंकार बिल्कुल नहीं है उनमें, बहुत ही शांति से काम करते हैं। और हाँ, इस शो के बारे में अगर आपका कोई फीडबैक है या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो टाइप कीजिए #devdattonmirchi #devdattonmirchi #devdattonmirchi और भेज दीजिए 9033 मिर्ची पर, या आप अपना फीडबैक इस नंबर पे भी शेयर कर सकते हैं 9033647244। मैं देवदत्त पटनायक मिलता रहूंगा आपसे मंडे टू संडे हर सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। थैंक यू।
1: देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची।
2: द देवदत्त पटनायक शो। द व्यूज एक्सप्रेस्ड इन द देवदत्त पटनायक शो आर द होस्ट्स अलोन, नॉट द चैनल्स।

0: यार आज ना मुझे बचपन का वो किस्सा याद आ रहा है जब मैंने पहली बार हाल ही वर्ड सुना था।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tuned in with me on Mirchi. अरे यार एक शाम की बात है जब दूरदर्शन पर ना वो शाम वाली न्यूज जो होती थी ना वो चल रही थी और न्यूज रीडर ने वर्ड कहा हाल ही में। आगे की न्यूज मुझे याद नहीं क्योंकि मेरी सुई अटक गई थी हाल ही पर। अब मैंने पलट कर मम्मा से पूछा कि यार मम्मा ये हाल ही कौन सी जगह है। मम्मा तब जोर जोर से हंसी और मैं आज तक हंसती हूँ जब इस किस्से को याद करती हूँ तो। क्या रियली थॉट कि हाल ही कोई जगह थी, बट हे हाल ही टाइम की दुनिया में जगह ही तो है यार, एंड दैट इज राइट नाउ। तो चलो हाल ही में जीते हुए 90s में चलते और मिड डे मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डालते हुए मैं आपसे कहती हूँ कि स्टे ट्यून विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: राजा हिंदुस्तानी की रिलीज के बाद जब भी मासी और कजिन्स लंबी छुट्टी स्पेंड करके नेक्स्ट डे जाने वाले होते थे ना, तो हम ओवर द टॉप एक्टिंग करते हुए यही गाना गुनगुना रहे होते थे कि परदेसी परदेसी जाना नहीं।
0: मिर्ची VCR।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड फिल्म राजा हिंदुस्तानी भी अपने टाइम की सुपर हिट फिल्म थी। तो मैंने जब ये फिल्म देखी थी बचपन में, तो मुझे उस टाइम पसंद नहीं आई थी, मेरा टेस्ट वैसा नहीं था ना यार, लेकिन उससे बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था। एंड द मूवी वॉज लाइक बाय अ लॉट मेनी अदर पीपल। लेकिन पता है, इस फिल्म को करने के लिए आमिर खान तैयार ही नहीं थे, लेकिन देन धर्मेश दर्शन कन्विंस्ड हिम कि ये फिल्म बहुत बड़ी कमर्शियल हिट रहेगी, विच टर्न ट्रू। और इस फिल्म से करिश्मा को एक नए अवतार में देखा गया था। आई रिमेम्बर लुकिंग एट हर फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ स्ट्रेट हेयर लुक एंड थिंकिंग वाओ। उस टाइम मेरी इतनी वोकैबुलरी हुआ करती थी, तो वाओ के अलावा और कोई शब्द नहीं निकला मेरे मुंह से। और इस मेकओवर ने करिश्मा को फैशन आइकॉन बना दिया था। एंड नॉट जस्ट स्टाइलिंग, बल्कि उनकी एक्टिंग भी इस मूवी में बहुत पावरफुल थी। सो मच सो दैट कि लोगों ने करिश्मा को रानी हिंदुस्तानी बुलाना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से कहा जाता है कि आमिर थोड़े खफा हो गए थे। खफा से भी कौन करता है वफा यार। इसे करते हैं दफा और आगे बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ। यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: आपको पता है राजा हिंदुस्तानी का द फेमस किसिंग सीन इज सेट टू बी बॉलीवुड्स लॉन्गेस्ट किसिंग सीन।
0: मिर्ची चैट रूम।
1: जी हाँ, वे बिफोर मर्डर हैपेंड टू द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री राजा हिंदुस्तानी का ये किसिंग सीन शूट हुआ था, लेकिन टाइम्स देन वर वेरी डिफरेंट। सो मच सो दैट कि करिश्मा कपूर वाज वेरी अनकंफर्टेबल डूइंग द सीन एंड देन शी आस्क्ड हर मॉम टू बी प्रेजेंट ऑन द सेट्स। और इस सीन को शूट करने में 3 दिन एंड 47 टेक्स लगे एंड बोथ आमिर एंड करिश्मा वो वेटिंग की ये सीन कब खत्म हो। फिल्ममेकर्स वांटेड टू पुट दिस सीन का पिक्चर ऑन द पोस्टर्स ऑफ द फिल्म ताकि फिल्म के बारे में बातचीत हो, थोड़ी कहानियां बने, लेकिन इवेंचुअली ड्रॉप द आइडिया। अच्छा ही किया, क्योंकि तब तो डेफिनेटली लोगों की पाचन शक्ति इस सीन को पचाने की तो नहीं ही थी। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot. Sara zamana,
1: Sara ka deewana. Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi, it's hot.
2: खूब जमता था रंग जब संडे मॉर्निंग को मिल जाते थे इतने सारे यार, बलूद पापा बेयर, मैडम महालिंगम, लुई, डॉन करनाज, शेर खान, मॉली और किट। याद है
1: मिर्ची पे टीवी दर्शन।
2: संडे की सुबह जिस वक्त टेल्स पे ना आता, हमारे खानदान का हर बच्चा स्टैच्यू बन जाता और वो भी टीवी के सामने। स्ट्रीट स्मार्ट किट और बल्लू की जोड़ी, कभी चेजिंग या कभी बीइंग चेज्ड बाय तूफानी लुटेरा डॉन करनाज। यू नो डॉन करनाज की आवाज हिंदी में किसने डब करी थी? जावेद जाफरी ने। एंड बड़ा ही कमाल डब किया था यार उन्होंने, आज तक मुझे डॉन करनाज याद है। एंड यू नो ये कार्टून को बनाने वाले जिम मैगन, हु वाज आल्सो द को क्रिएटर ऑफ डकटेल्स, वो लॉन्च पैड में कॉक को लेकर डकटेल्स का स्पिन ऑफ बनाना चाह रहे थे, बट इवेंचुअली देन जंगल बुक के कैरेक्टर्स बलू और शेर खान को लेकर उन्हें कपड़े पहनाकर टेल स्पिन की शुरुआत हो गई। एंड अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो आपको पता है इस शो से मैंने क्या सीखा है? बिकॉज ऑफ मॉली, मैडम महालिंगम की क्यूट सी छोटी सी बेटी, आई गॉट टू नो कि डिलिशियस का सही प्रोनंसिएशन क्या है। इट इज डिशिलियस। यार टेलस्पिन की बातें करते करते ना एक क्रेविंग सी हो गई यार टू वॉच टेलस्पिन, एंड आई चेक्ड इट ऑनलाइन बाय द वे। अगर आपको भी देखना हो ना तो इट इज अवेलेबल ऑन हॉटस्टार, यू मोस्ट वेलकम। और मेरे पास है वक्त बहुत कम और बातें बहुत ज्यादा, तो आगे बढ़े। यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: अगर मैं आपसे पूछूं कि दूरदर्शन पर रात 12 बजे के बाद क्या आता था इन द लेट 90s, तो क्या जवाब दोगे?
1: सारा जमाना, सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: अगर आपका साबुन फास्ट है तो आप समझ गए होंगे कि जो आता था दैट वॉज अ डीजे नाइट पार्टी का म्यूजिक। एंड यू नो व्हाट, मैं कभी कभी ना इस कलरफुल स्क्रीन को भी म्यूट करके देखा करती थी, क्योंकि ऑनेस्टली ये आवाज बड़ी बुरी लगती थी। इट यूज्ड टू फील लाइक अ पनिशमेंट। लेकिन जो कलर बार स्क्रीन पर आते थे ना, वो बड़े इंटरेस्टिंग लगते थे। लाइक आई कैन सजेस्ट कि अगर आप कोई 90s थीम की पार्टी रखो ना, तो उसके इनवाइट के कवर पेज पर यू कैन एक्चुअली यूज दीज कलर बार्स। दे लुक सो इंटरेस्टिंग। इफ यू कैन रिमेम्बर, क्या आप बता सकते हो कि कौन कौन से कलर्स थे स्क्रीन के कलर बार्स में? आई नो थोड़ा टफ क्वेश्चन है, लेकिन आउट ऑफ कोर्स तो नहीं है। एंड हु नोज, समवन हैज द आंसर टू इट। तो डीएम करो ना ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल, व्हिच इज मिर्ची सारा, एंड स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: आशिकिया कर रहे तो 90s की आशिकी फिल्म जैसी करो यारो।
2: मिर्ची टग्स ऑफ फिल्मिस्तान।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। आशिकी मूवी का ये गाना तो सबको याद है।

0: वेल, नदीम श्रवण का कंपोज किया गया ये गाना, जिसे गाया अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू ने है, इस गाने की धुन उठाई गई है फ्रॉम अ पाकिस्तानी सॉन्ग। जो कि पाकिस्तानी म्यूजिक कंपोजर सईद गिलानी की है, और शायद इस गाने की धुन कॉपी होने का इनको भी कोई गिला नहीं, तभी तो मीडिया में किसी ने कुछ रिपोर्ट ही नहीं किया। लेकिन नॉट टू वरी, मैं हूँ ना 90s और अर्ली 2000s की कॉपीड मूवीज और गानों की इन्फॉर्मेशन आपके पेशे खिदमत करने के लिए। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है तो फॉरन डीएम करो ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल व्हिच इज मिर्ची सारा। इसी के साथ अगला गाना आ रहा, यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: मेरा चैन वैन सब उजड़ा, जालिम नजर।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: मेरे यार की शादी है मूवी के लिए यश राज की पहली प्रेफरेंस वॉज अमीशा पटेल।
2: नब्बे की गप्पे।
1: हाय दिस इज मी सारा आपकी 90s की यादों का पिटारा। लेकिन जब अमीशा को रोल ऑफर किया गया तो वो वन फिल्म वंडर बनी हुई थी। कहो ना प्यारे के रिलीज के बाद उनके सुरखाब के पर लग गए थे यार, और वो सुपरस्टार बन गई थी और उन्होंने फिल्म को ना बोल दिया क्योंकि वो न्यू कमर्स के साथ काम नहीं करना चाहती थी। जिस पर उदय चोपड़ा को बड़ा गुस्सा आया, वो इतने नाराज हुए कि ही डिसाइडेड कि अब अमीशा पटेल को यशराज बैनर्स के लिए कभी कास्ट नहीं करेंगे। लेकिन यू नेवर से नेवर राइट। इवेंचुअली हुआ ये कि उन्हें थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक में कास्ट किया गया, जहां उन्होंने थोड़ा ही काम किया और उनका रोल जो उन्होंने प्ले किया था वो शायद आज तक किसी को भी याद नहीं है। बट हाँ, लेजी लम्हे गाना और उनकी परफॉर्मेंस उस गाने में वो याद रह गई। लेकिन हाँ, उन्होंने उससे ज्यादा काम किया था उस फिल्म में। वो जो एक कहावत है ना, वो यहाँ पे एकदम एप्ट होती है कि लौट के बुद्धू घर को आए। यू ट्यून इन विद मी सारा आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो खड़ी वरना चढ़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: डियर घड़ी,
1: यादों को चिट्ठी।
0: आज इस नाम को लोग बड़े ही प्रैक्टिकली ले लेते हैं। कोई कपड़ों की तय की तो कुछ हाथ में पहनने वाली घड़ी बतला देते हैं, लेकिन तुम तो इंस्टेंट घड़ी थी जो हम अपने हाथ पर बटका बनाकर दांतों के बाइट से डिजाइन किया करते थे। आज की महंगी से महंगी घड़ियों के डिजाइन भी इसके आगे पानी भरा करते हैं। आज लोग इंसान के बाइट को पॉइजनस बोलते हैं, और तब हम दोस्त एक दूसरे के हाथों पर अपने दांतों से ये डिजाइन दे दिया करते थे और कहते थे कि देख कितना सुंदर लग रहा है ना। तुम्हें पता है, एकदम से तुम्हारी याद आई तो तुम्हें चिट्ठी लिखने से पहले मैंने अपने हाथों पर तुम्हें अपने दांतों से छाप दिया था। तुम्हें इंस्टेंट टैटू कहें या घड़ी, जो भी तुम्हें नाम दे, एक बात तो पक्की है, मैंने कई बार आज भी अपने हाथों पर तुम्हें बनाकर अपने बचपन के प्यार को नापा है। तुम्हें याद करती तुम्हारी डिजाइनर सारा, जो यहाँ के अलावा इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगी बाय द नेम मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: कैसेट के साइड बी का तीसरा गाना, ये जो गाना है ना, इसे हम फैमिली पिकनिक्स पे अक्सर गाया करते थे और बड़ों का ये फेवरेट गाना हुआ करता था।
0: मिर्ची 90s कैसेट।
1: अलका याग्निक जी और कुमार सानू की आवाज में दिस ब्यूटीफुल, अमेजिंग एंड एनर्जेटिक ट्रैक फ्रॉम द फिल्म हम है राही प्यार के।

ये गाना नहीं है भाई, ये पूरा जीवन का फसाना है कि यार अगर साथ रहेंगे ना तो सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। एंड दैट इज सो ट्रू यार। क्या देखो, चीजें, रिलेशनशिप, पैसा, नौकरियां, ये सब तो आती जाती रहती हैं यार, लेकिन जब तक हमारे पास हमारी फैमिली की, हमारे अपनों की बैकिंग होती है ना, तब तक हमें ज्यादा चीजें हिला नहीं पाती हैं। क्योंकि एक बार मम्मी या पापा आके कंधे पर हाथ रख के कहेंगे सब ठीक हो जाएगा, हम दुआ करेंगे, और बस सब तभी ठीक हो जाता है कि नहीं। और ये जो लाइन है ना कि पल भर में हो जाएगी हर मुश्किल नाकाम, हौसला ना हारेंगे हम तो बाजी मारेंगे, यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, ओए होए होए, इसे तो जीवन का मंत्रा बना लेना चाहिए, नहीं क्या। चलो जी, अब इस गाने को आपकी 90s की प्लेलिस्ट के लिए सजेस्ट करते हुए नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू से हम है राही प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। आप अपना अच्छा खासा ख्याल रखिएगा और यहाँ के अलावा मुझे ढूंढ लीजिएगा ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। इसी के साथ अगला गाना आ रहा, यू स्टे ट्यून टू मिर्ची, इट्स हॉट।

Mirchi. It's hot.

0: Mirchi, it's hot.
1: Hum, akhiyan kare ji hazoor.

0: Energy. It's hot.
1: दिल वाली गल कर ले, प्यार मेरे नाल कर ले।

0: Mirchi, it's hot.
1: Let's go crazy.

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: न्यूयॉर्क में लंबी लंबी बिल्डिंग्स होती है ना, प्लेन से देखा था।
2: शशि वो मैनहट्टन है।
1: मैन हैटन
3: मैन आजमी हैट टोपी और मॉम व्हाट्स टैन इन हिंदी
2: टैन मतलब वो धूप की छाप।

मिर्ची इट्स हॉट।

0: रात बड़ी है मस्तानी, तू दिलबर जानी कर ले गाला गुड़िया।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: ओके, इससे पहले कि आप मेरी गलती पॉइंट आउट करें, मैं ही बोल देती हूँ, मैंने जानबूझ के गाला गुड़िया किया क्योंकि मैच गाला की बात करनी है यार, जिसमें इंडियंस ने इस बार तो अलग लेवल पे आग लगाई है। सो वी टॉक्ड अबाउट करण जौहर का डेब्यू, उसके बाद ईशा अंबानी का कुट्योर, एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट MM, बोले तो मनीष मल्होत्रा। सो ही वोर अ क्लासिक बंद गला जिसके थ्रू उन्होंने मुंबई द सिटी ऑफ ड्रीम्स को एक ट्रिब्यूट दिया है। उनके उस एंसेंबले को बनाने में 960 घंटे लगे, एंड इट वॉज अ मास्टर पीस वोवन विद आर्टिसंस नेम्स, यानी जितने भी आर्टिसंस ने उनके इस कुट्योर पे काम किया था उन सब के नाम जड़े हुए थे वहां। एंड द 3D इफेक्ट दैट हिज कॉस्ट्यूम हैड, OMG, ही वॉज डेफिनेटली वन ऑफ माई सुपर डुपर फेवरेट्स। एंड नाउ द सेकेंड फेवरेट, अनन्या बिरला की बात करना चाहती हूँ, जिन्होंने अपना डेब्यू किया ऑन द कार्पेट, एंड शी वोर अ कस्टम कुट्योर बाय रॉबर्ट वुन, जिसको उन्होंने पेयर किया था सुबोध गुप्ता के ही स्कल्पचरल मास्क से। माइंड यू, उन्होंने जो वो मास्क पहना था उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें किचन के सारे सामान थे, कटोरी चम्मच प्लेट, इन सारी चीजों से उनका वो मास्क तैयार किया गया था, विच वॉज इन अ वे ट्रांसफॉर्मिंग ट्रेडिशनल इंडियन सिल्वरवेयर इंटू अ स्टेटमेंट पीस ऑफ आर्मर। बट द पेयर विच डिसअपॉइंटेड मी पर्टिकुलरली वॉज महाराजा सवाई पद्मनाभ सिंह एंड प्रिंसेस गौरवी कुमारी, क्योंकि उन्होंने रॉयल जयपुर एलिगेंस को प्रबल गुरुंग के फिट्स में दिखाया तो, बट उनको देख के लग रहा था कि वो किसी की कॉकटेल पार्टी में जा रहे हैं शायद से। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स ऑन।